गैस संबंध प्रवृत्तिया वार्ताकरण सुविधा नंबर ने लिटो गैस तुलसी किन बसई लाफ गैस दस दिशी असु किन पहाड़ टकियाला लंका दीप वार्ता करनो लाफ गृहस्थ गैस मिल रुपया लिदा दिशी असु किन अडुकिरी मिटर तीर निकल बवत नव लाफ गैस मिल ये मध्यम रात्रि सिटे क्रियात्मक ने बवत लाफ गैस समागम ये पसरवे निवेदन निकल तीनो යනුව මේ ලාෆ් කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1280කින් අඩු කිරීමත් සමග එයි නව මිල වන්නේ රුපියල් 4965ක් කිලෝග්‍රෑම් 5ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 512කින් අඩු කිරීමත් සමග එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1988ක් එතකම ලිට්‍රෝ ගෑස් රුපියල් 300කින් බස්සයි කියලා වාර්තා වෙනවා ලිට්‍රෝ ගෘහස්ත गैस सिलेंडर के मिले रुपया तुंसी किन ये मध्यम रात्रि सीट पहला दम उबाव लिट्रो गैस समागम निवेदन करना लिट्रो किलोग्राम दुलाई दशम पहाक ग्रोस्त गैस सिलेंडर के मिले रुपया तुंसी किन पहला दमी मत सिद्धुवी में नानतुरु मिले रुपया हारदास हारसी हैट पहाक बावट पातन बाव इम समागम किए ना ये वक्त में लिट्रो किलोग्राम पहाक गैस सिलेंडर के मिले रुपया इकसी दहाट की पहला दम उबावत यही नाव मिले रुपया लिदा सबसे अनु देखा दक्वा अडू अनुभवत किलोग्राम देखा ही दसम तुनक गैस सिलेंडर के मिले रुपया पनस पहा किन पहले आमीन नव मिले वशेन रुपया अटसी तीस पहा बावट पत्तू बावत माई लिटो गैस समागम संधान करान।